0: तो फिर ने
1: क्या करी है तर भी आ गया
0: दौलत
2: कौन
0: पता नहीं दारूपी की गाड़ी चला रहा था मरते मरते बची हूँ मैं
2: फालतू है साला मुफ्त में सुन रहा है मत देख उसको चल छोड़ मैनेजर देख रहा है